0: लेता ले लीजिए
1: एंसल पैक किन लीजिए
2: जहिया फैन जहां फैन पैक खरीद करी तो 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीजिए कैश फिर तक ले लीजिए
2: एंसल पैक किन लीजिए सर लागू हुई एंसल नेपाल के लग
3: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दै छौ छोरी
4: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न लाउन कस्तो रहर लाछ
3: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
4: मेरो खुतुर्के छ नि आमा मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सकियो नि
3: कुरा राम्रै हो छोरी तर कसकोमा जाने हो त
4: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ अस्ति नै हेरिसके मैले त
5: न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टिकापुर न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गरगहनाहरू माइली तिलहरी हार झुम्का छड्के तिलहरी बाला चुरा चन्द्रमा जन्तर चन्द्रहार इन्डियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिनारसनका गरगहनाहरू पाइन्छन् साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन् अछाम मंगल साइनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार फोन नम्बर 98688147979 98247025 अछाम मंगल साइनका लागि ध्रुव सिंह सुनार गोपाल सुनार फोन नम्बर 98247025

बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइटिए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल

0: ओ मोबाइल नम्बर 9848423359।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाड खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हराए।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगलान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौला अवसर। अबदेखि टिकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलतमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही भदौ 20 गते र 27 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टिकापुर अस्पताल, टिकापुर, कैलाली।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू।
1: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तो, यहाँ हेल, ये पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन, बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही, तोर समस्या फैन अस्ते बा, जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी ही जाए।
3: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846477।
5: मेरो देश नेपाल।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: बजे के थारू भाषा के खोज खबर में यहां उक्रेन स्वागत बा। खोज खबर से छपिलाल चौधरी के राम राम। अब अपनी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फेसुन तिबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से रसुआ बहिया में पर्क अलपत्र परल 3029 जाहिन के उद्धार बेपत्ता के खोजी कार्य तीव्र 6 दिनसम रसुआ बहिया के कारण संपर्क विहीन हुईलक आफंत संपर्क में नहीं आई पाछ टीकापुर के नागरिक पीड़ा में सुदूरपश्चिम के 140 जना आमी संपर्क विहीन टीकापुर नगरपालिका वड़ा नंबर 5 में हाथी से स्थानीय के खेतीबाली में क्षति के बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज के टोली से स्थलगत निरीक्षण ओएसीसी प्रीमियर कप में नेपाल बहराइच बीच के खेल जारी। आप पूरा खबर भोटेकोशी लदिया में ऐलक बहिया में अलपत्र परल हुकन के अवस्था रहल 3000 से ढेर के उद्धार कई गिलबा जिला विपद व्यवस्थापन समिति के संयोजक एवं प्रमुख जिला अधिकारी शंभु प्रसाद रेग्मी के अनुसार गैल रात सम 3029 जाहिन रसुआ व नुआकोट के जिला ढेरनक स्थान से उद्धार कई गिलक हो ऊ मध्य नेपाली नागरिक 2776 जना विदेशी 253 जना पाछक 24 घंटा में 624 जाइन के उद्धार कई गिलक प्रमुख जिला अधिकारी रेग्मी जानकारी देहलबाट भोटेकोशी बहिया में अलपत्र परल उद्धार अंतर्गत जलविद्युत आयोजना के सुरंग भीतर रहल कई गिलक बाहेक के उद्धार जारी बा तभन रसुआ के टिमुरे श्यापुरवेशी मैलुंग लगायत के ठाव में आमी कुछजे फसल हुई सेकना कई का नियमित रूप में हेलीकॉप्टर मार्फत रेकी हुई ती रहल प्रमुख जिला अधिकारी रेग्मी कहलवाट अस्त कई के भोटेकोशी बहिया में पर्क हेरैलक आईतबार सम 1500 से ढेर व्यक्ति के परिवार के निवेदन पड़ल बा नुआकोट और रसुआ के ढेरनक ठाव से अपन मन हेरैलक जनैती खोज तलाश के लाख 1558 जना निवेदन जाहिन के निवेदन पैलक जिला प्रहरी कार्यालय के प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विपिन रेग्मी जानकारी देहलबाट वहां के अनुसार हेरैलक व्यक्ति के खोज तलाश के लाख नेपाल प्रहरी के वेबसाइट जिला प्रहरी कार्यालय प्रशासन कार्यालय ओ श्री नंबर 1 सैन्य तालीम केन्द्र विदुर में निवेदन दिए सेकजैत हेरैती रहलक हुक्रहिन तथा बहिया में फसल हुक्रहिन के खोज तथा उद्धार में हेलीकॉप्टर तालीम प्राप्त कुकुर और ड्रोन कैमरा के सहयोग में संयुक्त सुरक्षा फौज के टोली सक्रिय रहल बा बहिया में पर्क ज्यान जविया मध्य हालसम नुआकोट के 95 जाहिन के सब संकलन हुई बा जिला के ढेरनक 30 ठाव में संयुक्त सुरक्षा टोली परिचालन कई गिल करके खोजी तथा उद्धार मार्फत ऊ सब संकलन कई गिलक हो संकलन हुईलक सब पहचान के लाख प्रहरी तस्वीर सहित के विवरण सार्वजनिक करल बा सब नुआकोट से परीक्षण के लाख शिक्षण अस्पताल महाराजगंज काठमांडू में पठैलक मार संबंधित परिवार अस्पताल में संपर्क कर अनुरोध कई गिल बा 6 दिनसम रसुआ बहिया के कारण संपर्क विहीन हुईलक आफंत संपर्क में नहीं आई पाछ टीकापुर के नागरिक पीड़ा में बैठी रहल बाट रसुआ के भोटेकोशी लदिया में अलग बहिया पाछ टीकापुर जानकी जोशीपुर लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेश के 140 जना आमी संपर्क विहीन रहल बाट प्रदेश प्रहरी कार्यालय के अनुसार बहिया पाछ सुदूरपश्चिम के 176 जना संपर्क विहीन हुईलक विवरण प्राप्त हुईल बा 36 जना परिवार तथा प्रहरी के संपर्क में आश्याकलबाट प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपनिरीक्षक पदम बहादुर विष्ट बहिया पाछ संपर्क विहीन हुईलक 176 जना मध्य 36 जना संपर्क में अलग जानकारी देहलबाट आमी संपर्क विहीन रहल 140 जन के खोजी तथा उद्धार के लाख संबंधित निकाय संग समन्वय हुईती रहल प्रदेश प्रहरी जनैलबा बाढ़ी प्रभावित क्षेत्र में रहल सुदूरपश्चिम के नागरिक के अवस्था बारे थप विवरण संकलन तथा खोजी कार्य जारी रहल प्रहरी जनाइल बा। रसुवामा ऐलक बहिया प्रभावित हुक्रेन सहयोग हुइना कैक टीकापुरमा राहत संकलन अभियान शुरू कैगिल बा। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी टीकापुर शाखा के समन्वयमा युवा हुकन के अग्रसरतामा राहत संकलन कार्यक्रम कैगिलक हो। टीकापुर के व्यवसाय हुक्र आपन संग रहल नगद तथा लत्ता कपड़ा सहयोग करलबाट संकलित सामग्री नेपाल रेडक्रस सोसाइटी से रसुवा के बाढ़ी पीड़ित सम पुगैना नेपाल रेडक्रस सोसाइटी टीकापुर पालिका संयोजक धर्मराज शर्मा जानकारी देहलबाट। उहाँ राष्ट्रिय विपत्ति के ई अभियान में जोड़ सकुजाहीन आग्रह करलबाट। अस्त है टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ से रसुआ में ऐलक बहिया से पुगैलक क्षति प्रति दुख व्यक्त करती सहयोग रकम घोषणा करलबा। संघ काल बैठल कार्य समिति बैठक से बहिया पीड़ित हुकन के सहयोग के लाख 1,11,111 रूपया आर्थिक सहयोग करना निर्णय करलबा। संघ के अध्यक्ष संतोष खड़का आर्थिक सहयोग रकम प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष में जमा कैजिना जानकारी देहलबाट। संघ से सरकार से बाढ़ी पीड़ित हुकन के व्यवस्थापन लगायत के क्षेत्र में करती रहल पहल कदमी सहयोग पुगैना उद्देश्य से आर्थिक सहयोग करल बटागिलबा। खोज खबर में टीकापुर 5 में हाथी से पुगैलक क्षति के बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज के टोली से स्थलगत निरीक्षण लगायत के खबर पलिबा सुन्ती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: यो खाने मन त कहाँ छ र, तर के गर्नु, जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ, फेरि खानै पर्छ।
2: तपाईँ एक्लो कहाँ छ श्रेया, त्यति माया गर्ने आमा छिन्, दिदी छिन्, भाइ छ, बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे, कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ, बाँच्नुपर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ।
1: हो र, तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र, त्यसो भन्छ।
2: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त, जब म निस्केँ काम गर्न थाले अनि पो कमाइ छ त। यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन, हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो, अब घरजम गर्नु छ, श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
1: ओहो, तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस् जस्तै यार। अब म पनि कुलत छोड्छु, आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु, भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
5: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
0: हाल देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव रहल बा। मनसून के न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान से कुछ उत्तर ओहर सरल बा। अब देशभर साधारणतया बदरी लगती रहल बा। कोशी प्रदेश के कुछ ठाव में बागमती व लुम्बिनी प्रदेश के थोड़से ठाव में मध्यम सम्म के वर्षा हुईती रहल बा। आज दोपहर देशभर साधारणतया बादल बदरी लगुया बा। देश के हिमाली तथा पहाड़ी भूभाग में ढेर ठाव में मेघ गर्जन और चट्यांग सहित मध्यम वर्षा और हिमपात के संभावना बा। बागमती गंडकी लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग के कुछ ठाव में वर्षा हुई या बा। मध्य प्रदेश और कोशी प्रदेश के तराई भूभाग के कुछ ठाव में फिर मेघ गर्जन और चट्यांग सहित मध्यम वर्षा के संभावना रहल बा। देश के पहाड़ी भूभाग में साथ बागमती गंडकी लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग के एक दुई ठाव में भारी वर्षा के संभावना फेबा। टीकापुर नगरपालिका के वड़ा नंबर 5 में हाथी से नागरिक के खेती बाली व औद संरचना में पुगैलक क्षति के बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज के टोली स्थलगत निरीक्षण करल बा। हाथी से करल क्षति निरीक्षण करती बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज के प्रमुख संरक्षक अधिकृत डाक्टर अशोक कुमार राम से हात्ती के फे पुर्खा रहल बतैती हाथी मनैन संग पहले हेसे लग्घ रहलक मार मनैन के लग्घ लग्घ ऐना करल बतैती खाइक लाख फे चहना अन्न बाली वो औद ठाउँ म छेती करना करल बताइल बाट राष्ट्रिय निकुञ्ज के पूर्व कर्मचारी डाक्टर उमेश थापा बाली जोगाई किसान बीमा जसिन बाट म ध्यान लिए पर्ना बटैल बाट टीकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगरजी स्थानीय नागरिक जंगली जनावर के कारण समस्या पैती रहल समस्या समाधान कर दिए अनुरोध करल बाट कार्यक्रम में नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी नगर प्रहरी लगायत के सहभागिता रह आजकल दैनिक जसिन रात्रिक समय में वड़ा नंबर पांच के सिमरेनी शाहीपुर कर्मी डांडा नुकलीपुर लगायत के क्षेत्र में हाथी सतैना करल बा हाथी से रात के समय में गांव आई बेर घर भस्कैना किसान हुकन के धान बाली केराबाली नष्ट करना करल बा रात रात ऐना हाथी आके सतैना करल कारण यहां के नागरिक हुकर डराइल बाट वो आगी बार के भाड़ाकुरा ठठा के बैठना करल बाट जमरा शाखा सिंचाई प्रणाली जल उपभोक्ता संस्था कैल टीकापुर के छठौ चुनावी साधारण सभा शुरू हुई बा काल उद्घाटन हुई लग साधारण सभा में आज निर्वाचन हुई ना हुई बा साधारण सभा उद्घाटन पास बंद सत्र संपन्न हो सकल ओ काल ही संध्या से लव नेतृत्व चयन के लग चुनावी प्रक्रिया आघ बहर सकल बा काल संध्या निर्वाचन समिति से मतदाता नामावली सहित निर्वाचन के कार्यक्रम सार्वजनिक कर सकल बा लव नेतृत्व चयन के लग आज बिहान 11 बजे से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई ना निर्वाचन समिति के सदस्य दामोदर खड़का जानकारी देहल बाट साधारण सभा ऐना 4 बरस के लग लव नेतृत्व चयन करूया बा चुनावी प्रक्रिया में 48 जन पार्षद 58 जन बरघर ओ 15 जन उपशाखा कुला के सदस्यों के नया नेतृत्व चयन करूया बा खोज खबर में और खबर परिवार सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
4: के तपाईलाई थाहा छ
6: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ
4: हो र
6: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
4: अनि
6: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
4: के छ त विकल्प
6: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौ
4: विस्तारै गर्दा हुँदैन
6: हुँदैन टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
6: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली
7: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
8: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
7: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या खन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
8: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
9: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
0: खोज खबरमा अब मचल खबर कैलालीकै टीकापुरकै तीन किशोर लागू औषध सहित पक्राउ परलबाट टीकापुर नगरपालिका तीन शंकरपुरसे अवैध लागू औषध खैरो हेरोइन 810 मिलीग्राम सहित ऊ ठाउँमा बैठुए 18 वर्षीय दुईजना किशोर पक्राउ कैगिलबा ऊ दुनू किशोर इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर कैलाली से खटगैलक प्रहरी टोली आइतबार दिन के चेक जाँच करबेर ऊ पदार्थ फेला पार्क पक्राउ करल जनाइलबा अस्तहे टीकापुर नगरपालिका एक समितिपुर से फे अवैध लागू औषध खैर हेरैन 910 मिलीग्राम सहित उठाउ बैठुया 16 वर्षीय किशोर इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर कैलाली से खटगैलक प्रहरी टोली आइतबार संध्या पक्राउ करल बा। तेस्रो संस्करणकै पुरूष एसीसी प्रिमियर लीगमा आपन पहिला खेलमा नेपाल बहराइन विरूद्ध खेल्तिरहलबा खेल बिहान 7:15 मलेसियाकै बांगी स्थित वाईएसडी यूकेएम ओभल के खेल मैदानमा शुरू हुइलबा। एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल पहिला पटक बहराइन विरूद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न लागल हो। नेपाली टोली पहिलो खेलमा बहराइन हराक उत्कृष्ट शुरूआत कर चाहत जारी प्रतियोगिता में एक समूह से शीर्ष दुईठो टोली खेल सेमीफाइनल में ठाउ बनुआ वह कारण समूह चरण के चार ठो खेल महत्वपूर्ण हुईबा जारी खेल में नेपाल बलिंकर तिरहलबा। ई समाचार तैयार पारसम बहराइन 25 ओवर खेलती 8 विकेट के क्षति में 70 रन बनाइलबा। एसीसी प्रीमियर कप खेलना नेपाल के टोली में आसिफ शेख अर्जुन कुमार देव खनाल संदीप लामी छाने रोहित कुमार पौडेल दीपेन्द्र सिंह ऐरी बहिर अहमद संदीप जोरा ईशान पांडे गुलशन झा ललित नारायण राजवंशी करण केसी हेमंत धामी ओ शेर मल्ल रहलबाट। यह समाचार संग खोज खबर ओराइल अंतिम जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक एक ख्यारा फिर से रसुआ बहियामा पदक अलपत्र पड़ल 3029 जहीन के उद्धार बेपत्ता के खोजी काम तीव्र 6 दिन सम रसुआ बहिया के कारण संपर्क विहीन हुईलक आफन्त संपर्क में नहीं आयल पाछ टीकापुर के नागरिक पीड़ा में सुदूरपश्चिम के 140 जना आमी संपर्क विहीन टीकापुर नगरपालिका वड़ा नंबर 5 में हाथी से स्थानीय के खेती बाली में क्षति के राष्ट्रीय बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज के टोली से स्थलगत निरीक्षण ओ एसीसी प्रीमियर कप में नेपाल ओ बहराइन बीच के खेल जारी ली तब खोज खबर अतः प्राविधिक मित्र धन्यवाद देती अब खोज खबर से मई छपिलाल चौधरी बिदा हुटू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम।
10: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
11: यही भदौ 20 गते शनिबार का दिन
12: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
10: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बडी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागू पदार्थ सेवन गर्ने
12: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
11: डाक्टर आउने दिन यही भदौ 20 गते शनिबार
13: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टीकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टीकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868800008 र 9825 7772।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैं भरी लाए।
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार और बिहीबार बिरामी जांच कर आने भाई छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामी विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली। हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीर्थ 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एक नम्बर सुनबाट निर्मित अत्याधुनिक डिजाइनका गहना पाइनुका साथै अर्डर अनुसार गहना सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ।
1: सिद्धार्थ चोक टिकापुर कैलाली, संचालक दुर्बा सुनार।

0: होलसेल पैक किन लीते जहिया फेन जहाँ फेन पैक खरीद करी तो 20% कम कैश फिर तक एनसेल ऐप में क्लेम करी
1: कैश फिर तक ले लीते कैश फिर तक ले लीते
0: एनसेल पैक किन लीते शर्त लागू हुई एनसेल नेपाल के लग
2: पेट संबंधी संपूर्ण समस्या को उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुर में
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधि द्वारा गरिने
2: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
3: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
2: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
2: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
3: ईसीजी सेवा
2: डिजिटल एक्सरे सेवा
3: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
2: फोन नम्बर 9894827359 र 9848423059 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै

0: बुका पिए रही था कभी पेंसिल ले रही था कभी झोले फटा का आज का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गतिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर थी राहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कही था कभी पेंसिल हेरा कही था कभी झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए एक सौ सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलतु
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनेला बाट, अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्त बनी हो ना, वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मुआ का द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मुआ का द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
3: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
4: यही भड़ौ 20 गते शनिबार का दिन
5: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
3: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बढी रिसाउने, झिझो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागू पदार्थ सेवन गर्ने,
5: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनु होला।
4: डाक्टर आउने दिन यही भदौ 20 गते शनिबार
6: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक अस्पताल रोड टीकापुर। टाड़ा का बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टीकापुर में अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। संपर्क फोन नंबर 9868800008 र 9825637272।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओस्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर बर रही थी रहत
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
0: हेलो बहनी कता हो तिमीलाई थाहा छ कि नै सीजी कंपनी को वाई वाई जिंक 15 रुपया में एक पेटी रूपान 60 में उपहार सहित एक कचौरा पनि पाइन्छ तिमीले कति में किन्यौ
4: मैले त एक पेटी चाउचाउ रु 600 मा किने
0: 600 रुपया किन हाल्नु पर्यो 560 मा त ब्लक नम्बर 14 मा रहेको हरिलाल किराना पसलमा रु 15 वाला चाउचाउ पाइन्छ त्यो पनि सीजी कम्पनीको गुणस्तरीय चाउचाउ र त्यस्तै रु 25 को क्लासिक चाउचाउ र 35 को चाउचाउ रु 2500 रुपैयामा आउँदैछ नि त्यो पनि हरिलाल किराना पसलमै छ फेरि 500-600 रुपैयाँ वाईवाईमै किन हाल्ने 460 मा मामा चाउचाउ हरिलाल किराना पसलमै पाइन्छ त्यो पनि वाईवाई सीजी कम्पनीको र रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ भुलेर पनि अरू ठाउँमा नजानुस् है होलसेल र खुद्राको दरमा बिक्री गरिनुका साथै क्वान्टिटी अनुसार दर मिलाएर बिक्री गरिन्छ आधिकारिक विक्रेता हरिलाल किराना पसल साथै हिन्दू नारीहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ
4: हरिलाल किराना पसल ब्लक नम्बर 14 पार्क रोड टीकापुर कैलाली सञ्चालक प्रदीप बहादुर विष्ट सम्पर्क नम्बर 9848 40

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैं भरी लाए।
1: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज।

0: ए सन्टेकी आमा, तर कान्छा शालाको बिहाको न्युत आएको छ, कसो हो त, जाने विचार छ कि नै त?
1: आफ्ना कान्छा भाइको बिहा नगरिकन पनि भएन, जाउँ भने भयाको मंगलसूत्र पन भाँची गयो।
0: यतिका लागि त सामुएल ज्वेलर्स बनेको, बरु अहिले जाउँ, एक दुई दिनमा त फ्याट्टै बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ।
1: आज त सन्त्याका बाले मनकै पुरो हर्यो।
2: सामुएल ज्वेलर्स सुनसादीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनसादी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर तिहारी सिंह सुनार, सम्पर्क नम्बर 9868-44-1208, 9846-39-261।
3: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
4: अरे का करूरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू, मिलबो मिलबो नि करत, का कहिना हो का?
3: मिस्तरान वर्जन हुकन घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैला बाट, आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्रफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढो हो न, कबू कहुर घुम जाए त था पाए।
5: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली। प्रोप्राइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 9848-51-43-26।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था का कना हो बाबा के वस्त बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरा भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक थो
1: अरे कहाँ से नानम तो
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब दिन ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल ले रही था, कभी झोले फटा का आज इठा कहा कना हो कना हो। बाबा फिर उस टपाटी गतिलो ठाउ से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला अनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुही
1: लिया लिया मैं अब भी जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: यो खाने मन तो कहा छ र तर के गर्नु जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फेरि खानै पर्छ
4: तब एक्लो कहाँ छस् र यार त्यति माया गर्ने आमा छिन् दिदी छिन् भाइ छ बरु एक्लो त म छु म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झन्थे कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ बाँच्नु पर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ
3: हो र तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो भन्छ
4: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त जब म निस्के काम गर्न थाले अनि पो कमाइ छ त यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो अब घरदम गर्नु छ श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म
3: ओहो तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिछस् त यार अब म पनि कुलत छोड्छु आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: आई बुढल्ला सुन्तो कि नै वा नन्दे भोज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनी न पट्टा नि पैना त
1: अदि गहना बनैना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिले नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह।

0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए, रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए, वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846349261।
1: आई हो बड्डो घर कहिया सिजैब? पाछा से शुरू करल मने घर सिजा सेकल।
2: अरे का करू री बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो नी करत का कहीं ना हो का
1: मिस्तरान बर्दन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बने लबाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफी ओस्ट बनी हो ना उत्र फिर पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कहूँ रा घूम जाए ता था पाए।
3: यूपीवीसी ब्रांड के मुआ का द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मुआ का द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: छी छी फे चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटा हो तो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो
2: हजार हो
0: महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनों कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 26 20 300 और 98 656 92 026

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के सन्झेक पाँच बजे थारू भाषा खोज खबरमा अपनौकन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनौकरा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप से हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। देशभर बाढ़ी पीड़ित के लाख राहत संकलन करजैती। टीकापुर के महिला दर खैना खर्च बाढ़ी पीड़ित हन देना। चिनिया दूतावास से महुनियाल मावी भजनी हन शैक्षिक सामग्री और लाल झाड़ी अस्पताल हन स्वास्थ्य सामग्री सहयोग। रसुआ गरी आयोजना के सुरूंग भित्तर कोई नि भेटाइल पाछा घुमल नेपाली सेना के टोली। ओ जमरा शाखा जल उपभोक्ता संस्था टीकापुर के लौव नेतृत्व चयन के लागि 18 गते चुनाव हुईना। अब खोज खबर विस्तार रसुआ बाढ़ी पाछा प्रभावित के अवस्था नाजुक हुईल पाछ अत्रा बेला देशभर राहत संकलन के काम हुईती रहल बा। टीकापुर मनफे नगद तथा खाद्यान्न संकलन के लाख काम हुईती रहल बा। बाढ़ी से देश नई डुबल बेला महिला हुक्र लग हुईलक तीस के दर कार्यक्रम समेत नई मनैना निर्णय कलबाट। तीस मना दर कार्यक्रम 15 दिन आघने करना करलक महिला हुक्र। यह वर्ष तीस मना करना खर्च राहत खर्च कर लगलक महिला जागरण बहुद्देशीय सहकारी संस्था के अध्यक्ष राधा रावल बटुलबाट। देश पीड़ामा रहलक बेला मलम लगाई परत कैकन टोल विकास संस्था हुक्र समेत राहत संकलन कर लागल बाट। टीकापुर ओडा नम्बर 1 स्थित साझेदारी ओडा सञ्जाल मन 22 थो टोल विकास संस्था रहल बा। ऊ संस्था नगद राहत संकलन कर लगलग सिद्धि विनायक टोल विकास संस्था तथा साझेदारी ओडा सञ्जाल अध्यक्ष सिर्जना शर्मा पण्डित बटुलबाट। बाढ़ी पीड़ित राहत के लाख नगद कलहक निहोक खाद्यान्न लुगा कपड़ा चप्पल लगायत के सामग्री समेत आवश्यक बा। आमहीन महिला व बाल बालिका के लागि थप सामग्री चहल बा। महिला के लागि भित्री लुगा सैनेटरी पैड बच्चा के लागि पैड दूध तैयारी खाना समेत आवश्यक रहल बा। अधिकांश फेरना लुगा के अभाव हुईस्याकट कैक नेपाल रेडक्रस सोसायटी टीकापुर नगद बाहेक के सामग्री समेत संकलन कर लागल बा। रेडक्रस सामूहिक टोली बनाकन आइतबार सोमवार मंगलवार 3 दिन सामग्री संकलन कर लगलग नेपाल रेडक्रस सोसायटी टीकापुर के संयोजक धर्मराज शर्मा बटुलबाट। बाढ़ी प्रभावित हन अत्रा बेला सक्कु बात के आवश्यकता बा। वहां के प्रभावित हुक्र घरबार विहीन हुईल के संग जे ज्यादेल से फे काम लाग सेकना अवस्था हुईल बा। बाढ़ी पीड़ित के जीवन सहज बनाई संघ संस्था तथा व्यक्तिगत हिसाब से समेत नगद तथा सामग्री राहत उठैना काम हुईती रहल बा। उद्योग वाणिज्य संघ टीकापुर समेत 1 लाख बढ़ी नगद प्रधानमंत्री देवी प्रकोप कोष मन जमा कर सेकना निर्णय कर लबा। वस्तक नागरिक समेत स्वयं स्वस्फूर्त रूप मन रकम जमा करती रहल बाट। रसुआ में ऐलक बाढ़ी से प्रभावित तथा पीड़ित परिवार के लाख कैलाली के टीकापुर में राहत संकलन अभियान तीव्र पारगिल बा। बाढ़ी पीड़ित आवश्यक पना राहत सामग्री जुटाकन रसुआसम पुगेना उद्देश्य लेकर स्थानीय स्तर में अभियान संचालन करगिलक हो। राहत संकलन समिति टीकापुर बजार के विभिन्न पसल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान में पुगकन लत्ता कपड़ा दवाई मेडिकल सामग्री खाद्यान्न लगायत के सामान संकलन करती रह बा। संकलन करगिलक सामग्री व्यवस्थित रूप में जमा कर पैकिंग करकर रसुआ के बाढ़ी पीड़ित परिवारसम पुगेना तैयारी करगिलक समिति से जनागिल बा। अभियान में कर्णाली माध्यमिक विद्यालय टीकापुर 1 कैलाली व रेडक्रस सोसायटी के समेत समन्वय रहल बा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा रेडक्रस सोसायटी के समन्वयकर्ता आदरणीय धर्मराज शर्मा ओहो विद्यालय के शिक्षक नारायण प्रसाद ढुंगाना लगायत के समन्वय तथा सहभागिता में राहत संकलन अभियान आग बढ़ागिलक हो। राहत संकलन समिति के संयोजक में जानकी शाह रहलबाट। समिति के सदस्य हुकनम सरिता थापा रावल नारायण प्रसाद ढुंगाना आशा हमाल विष्णु रोकाया सूत्र राजेश कठायत राजेश कठायत नितेश रावत लोकबहादुर बुढ़ा छेत्री आशा भण्डारी बिमला विष्ट अर्जुन विश्वकर्मा निशा कडायत मित्र कमल सुवेदी रहलबाट। समिति सदस्य आशा भण्डारी के अनुसार टीकापुर के विभिन्न पसल तथा व्यवसाय से राहत संकलन हुईटीरल बा संकलन कार्य सम्पन्न हुईलबा सामग्री आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन करको रसुआमन पठेना तैयारी हुईटीरल बा बारी से प्रभावित परिवार के पीड़ामन साथ देह स्थानीय नागरिक व्यवसाय संघ संस्था विद्यालय तथा सहयोगी मन हुईलक सकोन अभियान मजार समिति आग्रह कलबा विपद के समय मन मानवीय सहयोग मार्फत पीड़ित परिवार राहत पुगेना उद्देश्य लेकर अभियान संचालन करतीरलक समिति जनैलबा जमराज शाखा सिंचाई प्रणाली जल उपभोक्ता संस्था टीकापुर के लौ नेतृत्व चयन के लागि यह भदौ 18 गते चुनाव हुना हुल्बा कालीसे से शुरू हुईलक छठौं चुनावी साधारण सभा मन अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव और सह सचिव पदमन चुनाव हुईलक लखो यी बाहेक कोषाध्यक्ष एकजना बर्गहर सदस्य सातजना महिला बर्गर सदस्य सात महिला सदस्य व आठ जना पुरूष सदस्य निर्विरोध निर्वाचित होसेकलबाट कोषाध्यक्षमा सीता चौधरी बर्गर सदस्यमा रामकृष्ण देवी चौधरी महिला सदस्यमा धना देवी बुढ़ा सारा सुवेदी शशिकला चौधरी बीना देवी कडायत विनीता कुमारी चौधरी पार्वती देवी चौधरी व सुन्दरी देवी चौधरी निर्विरोध निर्वाचित हुईलखुट वस्तका पुरूष सदस्यमा धनबहादुर साउत मोहनलाल महतो भीमबहादुर साउत प्रदीप कुमार शाह धीरेन्द्र बहादुर विष्ट फटे सिंह चौधरी जोखनलाल दंगौरा थारू पहल सिंह लोहार फिर निर्विरोध निर्वाचित हुईलक निर्वाचन समिति जनैलबा अध्यक्ष मन मान बहादुर चौधरी व अमर बहादुर चौधरी उपाध्यक्ष में वीर बहादुर घरती मगर व तुल बहादुर शाह सचिव मन भूपेन्द्र पुन मगर व हीरा देवी चौधरी सहसचिव मन एम नारायण शर्मा व तेज बहादुर चौधरी चौधरी के उम्मेदवारी परलबा अन्य मन निर्विरोध निर्वाचित होसेकलको अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव और सहसचिव पटमन कलहक सहमति निहुला कुंवर्से 18 गते बिहान 10 बजे से चुनाव हुना निर्वाचन समिति के सदस्य दामोदर खड्का जानकारी देलबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री खगराज भट्ट सुदूरपश्चिम में समृद्ध बनाईना दिशा में प्रदेश सरकार आग भर्ती रलग बटुला सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसंधान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आज धनगरी में आयोजना कलग जिला समन्वय समिति के पदाधिकारी हुकनसे स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रणाली सम्बन्धी कार्यक्रम मन बोल्टी मुख्यमन्त्री भट्ट कृषि पर्यटन तथा पूर्वाधार विकास हुन प्राथमिकतामा धर्क सुदूरपश्चिममा समृद्ध बनैना दिशामा प्रदेश सरकार आग भर्तीर लग जानकारी देलबाट वहाँ विकास र समृद्धिकै अभियानमा सक्कुपच्छ हुन सक्रियतापूर्वक लाग आग्रह गर्नबाट मुख्यमन्त्री भट्ट स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिकै कार्य सम्पादन हुन थप प्रभावकारी बनाई स्थानीय शासन कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रणाली महत्वपूर्ण हुन बटुलाबाट खोज खबरमा एकघरिक विश्राम विश्राम पछि निनीबाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टीकापुर म सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटी सत्कार पोलिक्लिनिक म बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उक्रा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा, डिजिटल भिडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित अटो एनालाइजर से सक्कु रगत जाँच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाट जोड्नी सेवा, टुटल हाट जोड्नीमा प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जाँच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा सँग तालिम पाइल स्वास्थ्य कर्मी से क्षयरोग तथा कुष्ठरोग सम्बन्धी सेवा फेदे जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली, गुम्बा रोड, गोलचोक लगह, टीकापुर कैलाली। फोन नम्बर 0915600595 ओ मोबाइल नम्बर 9848423359।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। रसुवाके भोटी कोशी लड्यामा अहिलेक बारी पाछा प्रभावित रसुवागढी जलविद्युत आयोजना के सुरुङ भित्र खोजी पूरा कर्क नेपाली सेना के उद्धार टोली फिर्ता हुई बा। सुरुङ के अन्तिम भागमा मनै फसलक आशंका कर्गिल सेफे सेना के टोली इन्जिनियर ओ ड्रोन टोली सहित खोजी कार्यमा खटगिल रह। टोली सुरुङ के भित्र भाग अर्थात अन्तिम बिन्दुसम्म पुगन ड्रोन समेत उडाइल विस्तृत खोजी करल त खान तलासी करबे। सुरुङ भित्र कौनोफे मानवीय उपस्थिति नै भेटगिलको कोइफे मनै नै रहलक पुष्टि हुइल्पा छ। खोजी कार्य औपचारिक रूपमा सम्पन्न करगिलबा। सुरुङ भित्र स्थिति सुरक्षित रहलक निश्चित हुइलसँग सेनाके टोली र सुवाके ढुन्चे फिर्ता हुइलक हो। नेपाल स्थित चिनिया दूतावास कैलाली ओ कञ्चनपुरके दुई संस्था सहयोग कलबा। दूतावास उज्यालो भविष्य कार्यक्रम अन्तर्गत भजनी स्थित मोहनियाल माविहन शैक्षिक सामग्री सहयोग कलबा। वस्तक आरामदायी प्रस्तुति कार्यक्रम अन्तर्गत कञ्चनपुरके लालझारी गाउँपालिका स्थित लालझारी आधारभूत अस्पताल हन स्वास्थ्य सामग्री सहयोग कलबा। सोमबार महुन्याल माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा चिनिया दूतावासकै सहयोगमा महुन्याल माध्यमिक विद्यालय हँ डेक्स, बेन्च, स्मार्ट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, स्कूल ब्याग लगायतकै शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण कलबा। सहयोगसे विद्यालयकै भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण सुधार हुनाकै सँग विद्यार्थीकै नियमित विद्यालय उपस्थित त्यहाँ प्रोत्साहन ओ अध्ययन प्रति रूचि तथा प्रेरणा बढ़ाई सहयोग पुग्न अपेक्षा करगिलबा। उस्तकन कञ्चनपुरकै लालझारी आधारभूत अस्पतालकै प्रस्तुति विभागमा विभिन्न वार्डकै लागि एयर कन्डिसनर जडान करगिलबा। यी से सुत्केरी दाई ओ नवजात शिशुके लागि सहज ओ अनुकूल वातावरण निर्माण हुनाकै सँग प्रस्तुति सेवाकै गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्न अपेक्षा करगिलबा। महुन्याल माविके समितिके अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद जैशीकी अध्यक्षतामा हुइल कार्यक्रम मना भजनी नगरपालिकाकै प्रमुख केवल चौधरी प्रमुख अतिथि रह कल ओस्तकन लालझारी गाउँपालिकाकै अध्यक्ष निर्मल राणा ओ भजनी नगरपालिकाकै उपप्रमुख राजु तिरुवा तथा लालझारी गाउँपालिकाकै उपाध्यक्ष सपना चौधरी विशिष्ट अतिथिकै रूपमा सहभागी हुइल रह। कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य विद्यालयकै प्रधान अध्यापक विद्याप्रसाद भट्टकर्ल रह। चिनिया दूतावासकै अनुसार उज्यालो भविष्य वा आरामदायी प्रस्तुति कार्यक्रम अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन करगिल यी पहिल संयुक्त कार्यक्रम हो। दूतावास शिक्षा स्वास्थ्य तथा जनजीवन से प्रत्यक्ष जोरगिलक क्षेत्रमा स्थानीय समुदायकै आवश्यकता पहिचान कर्क सहयोग तथा सहकार्य निरन्तरता देती ऐलक जनैलबा। कार्यक्रम चिनिया दूतावासकै ओरसे आयोजना व्यवस्थापक हुक्र इन्जिनियर सिवाङ दत्त, सभ्या बज्राचारी ओ जीवेश गुरूङ लगायतकै उपस्थिति रह। कार्यक्रमकै समन्वय दलित कल्याण संघ कर्ल रह। भदौ 10 गते भोटे कोशी लड्या हुइती त्रिशुलीमा उर्लक बारी विनाशकारी बाढ़ीसे रसुवा नुवाको धादिङ ओ गोर्खा लगायतकै जिल्लामा सड़क तथा पुल पूर्वाधार मन भारी क्षति पुगैलबा। बाढ़ीकै कारण सड़कको पुल संरचना कलक नाही। करिब 20 अर्ब रूपियाँ बराबरकै प्रारम्भिक क्षति हुलक सड़क विभाग जनैलबा। सड़क विभागकै प्रवक्ता शुभराज नेपानीकै अनुसार बाढ़ीकै कारण सड़क सञ्जालतर्फ करिब 10 अर्ब, पुल उहर 10 अर्ब, कैक कुल 20 अर्ब रूपियाँ बराबरकै प्रारम्भिक क्षति हुलक अनुमान करगिलबा। प्रवक्ता न्यौपानी बाढ़ी से पुगागिल क्षतिकै परिणाम एकदम भारी हुलक उहर्से स्थानीय पुननिर्माण सम्पन्न कर वर्षौं लग्ना ओ पुननिर्माण लागत साबिकै सेफे ध्यूर हुइसेक्ना जानकारी देलबाट। सड़क विभागकै स्थलगत प्राविधिक विवरण अनुसार बाढ़ी 40 किलोमीटर से धीर सड़क क्षति पुगेला बा ओस्तक भोटीकोशी तथा त्रिशूली लडेमा रहलक 41 थो प्रमुख पुल मध्य 32 थो पुल बाढ़ी पुनः रूपमा बगैला बा ओस्तक 3 थो पुल क्षतिग्रस्त हुईलबा कलशे 6 थो पुल कलक सुरक्षित रहलक जनागिलबा बाढ़ी नेपाल चीन सीमा जोड़ना रणनीतिक महत्व के रसुआगढ़ी स्थित मितिरी पुल सहित रसुआ के तीर पुरेके दुईठो बेली ब्रिज चिमिले ओ स्याफुस्रे के पक्की तथा बेली ब्रिज मैलुंग ह्याक क्षेत्र के जलविद्युत आयोजना के पुल फे बगैलबा उसका नुआकोटो रसुआ के सीमाना में पर्ना बेत्रावती के पुरानो लवो दुनुपक्की पुल तुमची त्रिशूली बजार मना पुरानो लवो पुल देवीघाट श्रीखली बुद्धि सिंह घाट रामा तेल लगायत के पुल फे पुहाकन लैकिल्बा। खोज खबर में फिर विश्राम विश्राम पाछैनी निवाती सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
4: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्मा टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार।
5: टिचिङ हस्पिटलबाट एमबी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ।
4: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
5: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम सीओपीडी
4: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
5: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
4: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
5: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
4: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
5: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
4: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर।
5: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म।
4: सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80 0008 र 9825 63 77 72।
6: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जैबो पाछा से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल।
7: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
6: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटरा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
8: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
9: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 5143 26।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा रसुवाके भोटेकोशी हुइती त्रिशूली लद्देमा अहिलेक विनाशकारी बाढ़ी से 6 दिन फे आज उद्धार तथा राहत जारी बा गैलक बुधबार अहिलेक बाढ़ीमा पर्कर निधन हुइलक मध्ये सोमबार बिहानसम्म 903 जना के सब फेला पलक राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जनैलबा प्राधिकरण के अनुसार भदौ 15 गते सोमबार बिहान 9 बजेसम्म के विवरण अनुसार बाढ़ीमा नपर्कन झण्ड 4247 जना सम्पर्क विहीनबाट कलशे 10551 जना के विभिन्न माध्यम से उद्धार करगिलबा बाढ़ीमा नपर्क सुरक्षाकर्मी समेत बेपत्ता रहलबाट नेपाल प्रहरी के 25 जना नेपाली सेना के 45 जना सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के 13 सुरक्षाकर्मी बेपत्ता रहलक प्राधिकरण जनैलबा ओस्तकन भन्सार कार्यालय के 15 जना अध्यागमन कार्यालय के 3 जना रसुआ के 865 जना नुआकोट के 1558 जना जल विद्युत आयोजना के 933 जना मकवानपुर के 65 जना बेपत्ता रहलबाट बाढ़ीमा विदेशी नागरिक 592 जना विदेशी पर्यटक के संग घुम गैलक नेपाली 127 जना लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज के 3 जना व क्वारेन्टाइन कार्यालय के 3 जना फे आबसम्म सम्पर्क विहीन रहलबाट प्राधिकरण सोमबार जनाएल अनुसार बाढ़ी प्रभावित ठाउँमा हालसम्म 37 थो ट्रक 35 थो बोलेरो मार्फत खाद्य व गैर खाद्य सामग्री पठागिल्बा ओसरक आठो हेलिकप्टर मार्फत उद्धार सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठागिलक सरकार से जनागिल्बा भदौ 14 गते रसुवा जिल्ला के लागि स्थल मार्ग एवं हवाई मार्ग से 5 पोर्टेबल जेनेटर सहित खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री दवाई स्वास्थ्य सामग्री पठाइनाकेसँग नुवाकोट जिल्ला मन 16 ठो सवारी साधन तथा हेलिकप्टर सामग्री परिचालन करगिल जनागिल्बा। यह समाचार के संग खोज खबर ओराइल अन्तिम जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से देशभर बाढ़ी पीड़ित के लागि राहत संकलन कर जैती टीकापुर के महिला दर खैना खर्च बाढ़ी पीड़ित न देना चीनिया दूतावास से महुनेल मा विभजनीय शैक्षिक सामग्री और लालझारी अस्पताल हन स्वास्थ्य सामग्री सहयोग रसुवा गरी आयोजना की सुरुंग भीतर की उनी भेटिगिल पाछ नेपाली सेना के टोली फिर्ता ओ जमरा शाखा जल उपभोक्ता संस्था टीकापुर के लौ नेतृत्व चयन के लागि 18 गते चुनाव होना लीता आवकला थारू भाषा खोज खबर अत्र 6 बजे नेपाली भाषा मन खोज खबर सुन सकी अब खोज खबर से प्राविधिक मित्र आका चौधरी धन्यवाद देती मैं गीता बिदा हुई टू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम।

0: ले लीजिए
1: एंसल पैक किन लीजिए
2: जहिया फैन जहां फैन पैक खरीद करी 25% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीजिए कैश फिर तक ले लीजिए
2: एंसल पैक किन लीजिए शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग
3: घर त जेन्तेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
4: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाई काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
3: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका
4: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
3: अब त म ढुक्क
5: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
4: मोबाइल नम्बर 98 48 51 43 26 जमरापारी टिकापुर कैलाली

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जै बो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन का न घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेल बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
2: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541 43 26
3: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
4: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
3: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर
1: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
5: मैं नहीं जाइस वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु
1: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई
5: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुंजली भुटला झरना कपार के तालू खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
6: दलित के हो
7: कसैको घरमा जन्मेर ब्राह्मण हुँदैन कसैको घरमा जन्मेर शूद्र हुँदैन
6: के दलित मानव होइन र के प्रयास हुँदैछन् विभेद न्यूनीकरण गर्न
8: सुदूरपश्चिमका आम दलित समुदायहरूको पहिचानको कुरालाई मैले खोजी गर्दैछु
6: गाउँदेखि सहरसम्म स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म हरेक तह र तबकासम्म पुग्छौ हामी आवाज विहीनहरूको आवाज बन्छौ हामी विभेदका विरुद्ध हाम्रो सानो प्रयास कार्यक्रम समानताका स्वरहरू तपाईँकै घर छेउको रेडियोमा सुन्न नभुल्नुहोला साताको सोमबार राति 8:05 बजे

0: लिटे शर्त लागू हुई एनसेल नेपाल के लग
1: जिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनु हुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।